मुझे आज भी पसंद है वो रात का आलम, आसमान से बरसती हल्की ओस की बूंदे, हाथ में चाय का प्याला, चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा, हल्की धुन में बजता रेडियो और हमारा पसंदीदा।

0: देखो आपस में जंग, हाँ आपस में जंग, हाँ आपस में जंग, जंग घुमा के।
1: माझे नाव अखिलेश आदिनाथ शेडाळे, तुम्ही ऐकत आहात बदलत्या नगरचे लोकमाध्यम रेडिओ नगर 90.4 FM, आवाज तुमचा।

और जान हमें पर दोगी। कभी हमने नहीं सोचा था ऐसा दिन भी आएगा, पानी में आग लगेगी, पत्थर भी पिघल जाएगा। देखो तुमसे

वो आग उधर भी होगी, जो आग है अपने दिल में वो आग उधर भी होगी, जो आग है अपने दिल में वो आग उधर भी होगी। कभी हमने नहीं सोचा था।

पर हम सदैश पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि वंदना विराजमान स्नेही से तीर्थेश्वर श्री जी महाराज साहब विदुषी महासती वृंद नौ तत्व का प्रैक्टिकल रहस्य भरा ज्ञान जिन शासन का प्राप्त करने के लिए जुड़े हुए श्रद्धालु श्रोतागण आश्रय यानी आना लेना आने देना आना लेना आने देना और इसके 20 रास्ते हैं। 20 रास्तों से आता है, 20 रास्तों से हम लेते हैं और 20 रास्तों से कोई हमारे पास भेज सकता है। चाहे मैंने आने दिया हो, चाहे वो मैंने लाया हो, चाहे मैंने लाया नहीं लेकिन मैंने रोका नहीं, तो भी आश्रय तो मेरे अंदर ही होना है। अरे आश्रय जो वस्तु निष्ठ होता है तो कर्म का बंध होता है, और जब व्यक्ति परख होता है, जीव को लेकर के होता है, सजीव को लेकर के होता है, जब व्यक्ति या जीव के साथ होता है तो रिश्ता बनता है, वस्तु के साथ बनता है तो कर्म बंध होता है, और जीव के साथ होता है तो रिश्ता बनता है, और इन दोनों के बल पर ही संसार में इस लोक यात्रा में मेरा जीवन कैसे रहेगा एक हाथ में कंट्रोल है। कर्म से भी अधिक कंट्रोल किसी के हाथ में है, कर्म से भी अधिक कंट्रोल किसी के हाथ में है तो रिश्ते के हाथ में है। भयंकर पाप कर्म बांधे और एक पुण्यशाली व्यक्ति के साथ मेरा रिश्ता, चंडकोशिक अर्जुन माली, वो किसान जिसकी कहानी कल आपको बताई, अनोइंगली रिलेशन था, लेकिन अनोइंग रिलेशन में भी भगवान महावीर के समय में केवल चंडकोशिक ही अकेला जहरीला सर्प नहीं था, हजारों सर्प थे, लेकिन तीर्थंकर महावीर कोई हर सर्प के पास नहीं पहुंचे, कोई चंद्र वाला अकेली दासी नहीं थी, हजारों सैकड़ों दासियां थी। जो जीव तुम्हारे पास आता है, जिसके तुम मां बाप बनते हो, वो जीव भी पिछले रिश्ते से आता है और वैसा ही व्यवहार तुम्हारे साथ करता है। कुछ कर्जा चुकाने के लिए आते हैं और कुछ कर्जा वसूल करने के लिए आते हैं, और ये जब आते हैं तो लगता है हमारा कर्म, कर्म के साथ में क्या रिश्ता, जीवन में एक रिश्ता ऐसा होना चाहिए। दुर्योधन ने शकुनी के साथ रिश्ता कर लिया, पांडवों ने श्री कृष्ण के साथ कर लिया, मैना सुंदरी का श्रीपाल का कोई जन्म का रिश्ता ऐसा मत सोचना, वो प्रीवियस लाइफ का रिश्ता है। रिश्ते खींचते, रिश्ते का आश्रय करते समय, रिश्ते का बंध करते समय, कर्म का आश्रय करते समय और कर्म का बंध करते समय, आश्रय होने के बाद बंध होने देना कि नहीं होने देना, तीर्थंकर परमात्मा फरमाते हैं कि आपके हाथ में आश्रय हो गया है, कोई घर में आ गया है, लेकिन उसको फैमिली मेंबर बनाना कि गेस्ट बनाना कि रवाना करना है,
ये आपके हाथ में। पुण्य का आश्रय हुआ है, किसका आश्रय हुआ है? पुण्य का आश्रय हुआ है। लेकिन पुण्य का आश्रय होने के बाद कई बार ऐसा हो जाता है कि पुण्य का फल नहीं मिलता है, आश्रय पुण्य का हो गया है लेकिन फल पुण्य का नहीं मिला है। कई बार ऐसा भी होता है कि पाप का आश्रय हुआ है लेकिन फल पाप का नहीं मिला। नॉर्मल तो ही है, पुण्य का आश्रय हुआ पुण्य का फल मिला, पाप का आश्रय हुआ पाप का फल मिला, ये नॉर्मल है। लेकिन दूसरी दो स्थितियां भी है कि आश्रय पुण्य का हुआ है लेकिन बंध करते समय गड़बड़ कर दे, गड़बड़ कर दे। बहुत प्रसिद्ध कहानी आप लोगों ने कई बार सुनी होगी, राजा श्रीनिक के समय में, भगवान महावीर के समय में, राजगृही नगरी में एक अरबपति व्यक्ति, खरबपति, उसके पास इतना ऐश्वर्य इतना वैभव कि राजा श्रीनिक का वैभव भी और शालीभद्र का वैभव भी उसके सामने फीका। इतना श्रीमंत, धुआंधार बारिश चल रही है, घनघोर बारिश, रात का समय, बिजलियां कड़क रही है, नदी को पुर आया, महापुर आया है। राजा श्रीनिक अपने महल में से, खिड़की में से, गवाक्ष में से ऊपर जाकर के देख रहा है क्या स्थिति है नगरी की, निरीक्षण कर रहा है, ऑब्जर्वेशन कर रहा है। और बिजली पर बिजलियां चमक रही, और उसने देखा कि ऐसे भयंकर बारिश में कोई व्यक्ति नदी में बह करके जो आ रहे हैं लकड़ियां, उनको बटोरने में लगा हुआ है। सरप्राइज, स्तब्ध हो गया। जिस बारिश के बीच में कोई बाहर जाने की हिम्मत नहीं कर सकता है, तुरंत उसने अपने

को नहीं, और उसको दूसरे दिन मेरे सामने हाजिर करने के लिए कहा गया था। उसको लेकर आए, सेकंड लेकर आए सभा में। उससे पूछा गया, भैया तू रात के इतने अंधियारे में, इतने घनघोर बारिश में तू ये काम कर रहा था? बोले, क्या तेरी ऐसी मजबूरी, क्या तेरी आवश्यकता है, क्या तेरी रिक्वायरमेंट है? बोले, मेरे पास एक बैल है, मुझे एक बैल उसकी जोड़ी चाहिए। एक बैल है मेरे पास और एक बैल चाहिए। राजा ने कहा, उसके लिए इतना कर रहा था? जा मेरे पशुशाला में, ले जा तुझे बैल। बोले, मेरे बैल की जोड़ी का बैल चाहिए। बैल कैसा चाहिए? मेरे बैल के जोड़ी का बैल चाहिए। बोले, तू जा, तुझे जो बैल पसंद आए, जो तेरे बैल जोड़ी का होगा वो लेके जा। बोले, राजन, राजगृह के किसी पशुशाला में मेरे बैल के जोड़ी का बैल नहीं है। बोले, क्या बात करता है? बोले, हाँ, मेरे पास जैसा बैल है वैसा बैल आपके पास भी नहीं है, राजगृह में किसी सृष्टि के पास भी नहीं है, और उस जोड़ी का बैल मुझे बनाना है, बनाना है। बैल को बनाया जाता है कि परचेस किया जाता है? क्या कर सकते हैं? अभय कुमार ठनका माथा है। बोले, राजन, ये बनाने की बात कर रहा है, ये बेल परचेस करने की बात नहीं है। और उसने उस सेठ से, उस व्यक्ति से पूछा, बेल बनाना? बोले, हाँ, मैं बना रहा हूं। बोले, बेल, मैं बेल बना रहा हूं। सारी सभा चकित हो गई। बोले, बेल कैसे बनाया जा सकता है? बोले, एक बार आपको मेरा बेल देख लो, मैंने पहला बेल कैसा बनाया है और उसके जोड़ी का दूसरा बेल मैं बना रहा हूं, उसके लिए मुझे चाहिए। तो बोले, कैसा है ऐसा? बोले, आप चलो देखने के लिए और उसके जोड़ का बेल मुझे दे दो। बोले, दे देता हूं। और गए सारे, बड़ी हवेली, बहुत बड़ी हवेली, हवेली में गए। वो लेकर गया बिल्कुल भूयार में, भूमि ग्रह में, तृण घर में। अब सारे स्तब्ध की, बोले, बेल पशुशाला में हो सकता है, अंडरग्राउंड बेल कैसे? लेकिन हम जा रहे हैं देखने के लिए। गया और एक बेल पर का कपड़ा हटाया और पूरा जहां अंधियारा था और रोशनी रोशनी हो गई। बोले, ये बेल, बेल का आकार था, बेल का आकार था गोल्ड, सिल्वर, डायमंड। और दूसरा बेल का आपका जो अधूरा था उसका कपड़ा हटाया। बोले, ये अधूरा है, इसको आप पूरा कर दो, उसको आप पूरा कर दो। राजा श्रीनिक ने कहा, ऐसे बेल के लिए कुछ देना मेरे बस का नहीं है। लेकिन राजा श्रीनिक के मन में क्वेश्चन आया, इतना तेरे पास है जो मेरे पास नहीं है, राजगृह के किसी सृष्टि के पास नहीं है, उसके बावजूद तू ये क्या जिंदगी जी रहा है? क्या जिंदगी है तेरी? मुझे भी कई बार लोगों को देख करके आता है मन में, इतना पड़ा है, क्या जिंदगी है? उसके पूछा और उसने जवाब दिया। बोले, राजन, ये बात तुम्हारे समझ में नहीं आएगी, ये बात तुम्हारे समझ में नहीं आएगी। अरे, बोले, तू ऐसा करता क्यों है? बोले, आई डोंट नो, लेकिन मेरी एक ही तमन्ना है कि इसके जोड़ी का बेल बनाऊं।

0: राजा ने पूछा, अरे ऐसा बैल बना करके क्या करेगा, ना खेती में काम आएगा ना गाड़ी में काम आएगा। बोले राजन, वो तुम्हारे समझ में नहीं आएगा। अभी बोलते हो ना ऐसे, ये हमारा सब थका समझ में नहीं आएगा। यहां यदि आपका इंसल्ट हो जाए या किसी धर्मस्थान में आपका इंसल्ट हो जाए, वापस जाना चाहोगे वापस? नहीं ना। इसका मतलब जहां इंसल्ट होता आप जाते नहीं हो, पक्का है ना, 100% ना। वो व्यक्ति हाथ ऊपर करे जिसका घर में इंसल्ट नहीं हुआ है। अरे अभी तो आपने कहा ना कि जहां इंसल्ट होता मैं जाता नहीं हूं। हाथ ऊपर करो ना कि जिनका घर में इंसल्ट नहीं हुआ है, वो इंसल्ट समझ में नहीं आता। आचारांग सूत्र का आराधना चल रही है और आचारांग सूत्र में यही गया, इतना दुखी, इतना दुखी, इतना संतरास है, फिर भी वो जगह की छोड़ता क्यों नहीं। राजश्रेणी को भी प्रश्न पड़ा, मम्मन सेठ के, उसके पास कोई उत्तर नहीं था। अभय कुमार को पूछा, बोले ये ऐसा करता क्यों है, ऐसा माइंडसेट कैसे होगा इसका, ये ऐसी बुद्धि कैसी फिर गई इसकी, जिसमें से कुछ आना नहीं, जाना नहीं, खाना नहीं, पीना नहीं, आराम नहीं, कुछ नहीं, और उसमें इन्वेस्ट कर रहा है। बोले मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है। और गए महावीर के पास पूछने के लिए कि वो सेठ जिसका नाम क्या था, मम्मन सेठ, क्या नाम है, मम्मन सेठ। बोले इतना धन, इतना धन, इतना धन, इतना धन कि मेरा कोष भी उसके सामने फीका है, और फिर भी वो ऐसा जीता है कि जैसा कोई मजदूर नहीं जीता है, वो यूज नहीं कर रहा। बोले ऐसा क्यों माइंड सेट हुआ उसका, कहां से सीखा उसने, ये कौन उसका सलाहकार है, और ऐसा सोच उसका कैसे हो गया। तीर्थंकर महावीर ने कहा कि राजा सैनिक, ये जन्म का नहीं इसका सोच, इसका बीज इसके प्रीवियस लाइफ का है। कौन से लाइफ का है, प्रीवियस लाइफ का है। बोले क्या हुआ, एक तरफ इतना वैभव और दूसरे समय इतना दरिद्री मन, इतना श्रीमंत है और मन से इतना दरिद्री है, ऐसा कैसे हो गया। बोले और तीर्थंकर महावीर ने उसके पिछले जन्म का सीक्रेट ओपन किया, बड़ा गजब का सीक्रेट है। बोले राजन, ये पिछले जन्म में भक्त था, श्रावक था, सज्जन था, धार्मिक था, इसके घर के आंगन से कोई खाली हाथ नहीं लौटता था, दाता भी था। बोले दाता था और ऐसा भून गया, ऐसा क्या हो गया। बोले व्हाट हैपन्ड, आपके लिए पिछले जन्म में दान किया उसने, दान के बाद तो जीवन सुख में होना चाहिए, ऐसा क्या हो गया। बोले और उन्होंने कहा कि एक दिन एक तपस्वी आहार के लिए आया, गोत्री के लिए आया, सेठानी घर में थी नहीं, पने इसके घर से खाली हाथ कोई जाता नहीं था, आया तपस्वी का स्वागत किया, वेलकम किया, खुशी हुई उसको, देखा भंडार में जाकर के रसोई तैयार नहीं थी, लेकिन खाली हाथ नहीं जाएगा मेरे घर से, खाली हाथ नहीं जाएगा, सब्जी नहीं है, रोटी नहीं है, लेकिन कुछ न कुछ तो मेवा होगा ही होगा। इस चलते चलते बोल रहा हूं, कई बार संत घर पर आते हैं, अवसर नहीं होता है, मार सब रसोई तैयार को नहीं, अरे रसोई तैयार कौन, तो शक्कर भी घर में कोई नहीं गई, सुखी चीज भी कोनी की घर में। और वो सेठ जिसके मन में दान की भावना है, जिसके आंगन से कोई खाली हाथ जाता नहीं, सेठानी घर में नहीं, डिब्बे खोज रहा है और एक लड्डू का डब्बा मिल गया, उसमें एक ही लड्डू था, एक ही लड्डू था। उसने वो लड्डू उठाया, संत को बेराया, बहुत खुश हो गया कि संत चले गए। और वो डिब्बा जो था ना, वो डिब्बे में लड्डू के कुछ दाने बचे हुए थे, वो दाने उसने मुंह में डाल लिए। वो जैसे मुंह में डाले, थोड़ा रहता है तो टेस्ट आती है, ज्यादा रहता है तो टेस्ट गायब हो जाती है। कभी प्रयोग करना हो तो कर सकते हो। आपका क्या फेवरेट है? गुलाब जामुन, रसगुल्ला, जिलेबी, जो है आइटम आपका फेवरेट है, आराम से आप जर करो कि वो आइटम आपके पास आया है, पहला आइटम आया है और आपने खाया है, बहुत रस आया है। क्या सेकंड आइटम में उतना रस आएगा उसके? गुलाब जामुन का एग्जांपल लेकर के चले, गुलाब जामुन बहुत फेवरेट है, पहला लिया, दूसरा गुलाब जामुन आया, उतनी टेस्ट आएगी? तीसरा गुलाब जामुन आ गया, चौथा आ गया, पांचवा, छठा, सातवां, और कोई पच्चीसवां आ जाए तो गुलाब जामुन में टेस्ट है या तुम्हारी भूख में टेस्ट है? तुम्हारी भूख में टेस्ट है। और थोड़े से दाने थे, मुंह में डाले हैं, क्या मस्त है, क्या बढ़िया है, क्या बढ़िया टेस्ट है। अरे यार, अरे पूरा लाडू बेरा दिया यार, आधा बेराता तो भी काम, आधा रख लेता है, अब ले सके नहीं, दे गया सो दे गया, दिन भर वही सोचता रहा है। अरे पूरा नो तो बेरा जन, पूरा नहीं बेराना चाहिए था, पूरा नहीं बेराना चाहिए था, आधा बेराता तो भी काम हो जाता है, आधा देता तो भी काम हो जाता, आधा मेरे रख लेता, स्वयं के लिए रख लेता है। ये सोच में वो डूबता चला गया है। और जो पुण्य बंधा था उसको लॉक लग गया, लॉक लग गया। पुण्य से श्रीमंती तो आई लेकिन स्वाद नहीं ले पा रहा है, एहसास नहीं कर पा रहा है। इसको कहते पुण्य का आश्रय हुआ लेकिन बंध विपरीत हो गया है, विपरीत बंध हो गया है। और उसका परिणाम ये भुगतना पड़ रहा है। इसलिए इस नौ तत्व का एक छोटा सा मंत्र याद कर लीजिए, अच्छा करके पछताना नहीं, अच्छा करके बोलो बोलो अच्छा करके। और मैक्सिमम मां बाप अच्छा करके पछताते हैं, मां बाप की बात करो पहले, मैक्सिमम मां बाप आप देखोगे अच्छा करके पछताते हैं। बेटे को पढ़ाया, बेटी को पढ़ाया लिखाया, होशियार किया, सब कुछ किया, और एक समय आता है कि बेटा तुमसे मुंह मोड़ लेता है, और मुंह मोड़ने के बाद तुम्हारे मन में एक ही आता है, अरे कई करियर नहीं, लारे जिंदगी नहीं लगाओ तो अच्छो रे हो तो। ये मन सेठ बनने के रास्ते है। और ये होता है बंधु, ये होता है। ये प्रवीण ऋषि ने भी बहुत बार किया, गुरुदेव की कृपा से एक सौभाग्य का अवसर मिला था सिखाने का, सिखाने का अवसर मिला था। मैं आज इसलिए बोल पा रहा हूं आपके पास, मैंने डे वन से कहा हुआ आपसे कि तुम्हारे लिए समर्पण चतुर्मास हो या नहीं हो, मेरे लिए समर्पण चतुर्मास है। मैंने यहां से फ्री होकर के जाना है। अब नहीं होता, लेकिन शुरुआत में मेरे मन में होता था कि जिनको सिखाया, बहुत सिखाया। सुबह बैठता था, सूर्योदय के साथ बैठता था, केवल दोपहर के एक समय के गोचे के लिए एक घंटा उठता था, शाम को उठता था, 8 से 10 घंटे कंटिन्यू क्लास लेता था। नाम किसी का नहीं लूंगा। और जब बाद में उन लोगों का रिस्पॉन्स देखा तो कई बार मन में आता था किस लिए मैंने इनको पढ़ाया। लेकिन गुरुदेव की कृपा कि जो मन में थॉट्स आए थे उसकी आलोचना पूरी होने के लिए 2017 का सालाना पड़ा। कितना? 2017 का। बार बार मन भटकता था, बार बार मन दुखी होता था, लेकिन एक दिन गुरुदेव की कृपा हुई और एक सेकंड थॉट उभर करके आया। अरे उस निमित्त से तेरे ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयक्षम हो गया है गुरुदेव की कृपा के कारण से। उन्होंने क्या किया उसके तरफ देख करके तू मम्मन सिट क्यों बन रहा है, तू मम्मन सिट क्यों बन रहा है। और उस दिन के बाद से अंदर के मम्मन सिट से मुक्त हो गया गुरुदेव की कृपा। और इसलिए कहता हूं कि बहुत सारे महाबाप जो है पछताते हैं, अच्छा करके पछताते हैं। बहुत सारे आप समाज में काम करते हो, किसी के लिए मदद करते हो और सामने से वैसा रिस्पॉन्स नहीं आता है तो पछतावा शुरू हो जाता है। और ये पछतावा तुम्हें लगता है कि नेचुरल है, स्वाभाविक है, नथिंग। और जो किया उसकी खुशी मनाओ, अच्छा किया उसकी खुशी मनाओ। अच्छा करके पछताओगे अगले जन्म में मम्मन सिड बनाओगे। आप देख सकते हो अपने आसपास में किन्ना लद्दा, किन्ना पत्ता, किन्ना अभी समझना गया। सुखिपाक सूत्र के 3 क्वेश्चन है। सुबाहु कुमार आता है तीर्थंकर परमात्मा के दर्शन के लिए, इंद्रभूति गौतम उसको देखते हैं और इंद्रभूति गौतम के मन में, वो इंद्रभूति गौतम को वंदना करने के लिए आया नहीं, हो वंदना किसकी कर रहा हो, तीर्थंकर परमात्मा की वंदना कर रहा है। तीर्थंकर परमात्मा की वंदना करके वो चला गया है और इंद्रभूति गौतम ने केवल उसको देखा है और उसको देख करके इंद्रभूति गौतम के मन में उसके प्रति प्यार उमड़ कर, इट्ठे कंते पिए मनुने मनुना रुवे, ये व्यक्ति मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे पर इसका बहुत इंप्रेशन पड़ गया है। ऐसा क्यों हो गया, मेरी उसके साथ कोई बात नहीं, कोई चीत नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, और उसको लेकर के मेरे मन में इतना प्यार क्यों उमड़ करके आ रहा है। और इंद्रभूति गौतम परमात्मा के पास पहुंचते हैं और पूछते हैं किन्ना लद्दा, किन्ना पत्ता, किन्ना वेनस बन गया, किमा धच्चा, किमा भोच्चा, किमा पिच्चा, किमा किच्चा। ये जो इसको वैभव मिला है, ये जो मुझे प्रिय लग रहा है, ये जो मुझे कांत लग रहा है, ये जो मुझे विष्ट लग रहा है, मेरे मन पर इसका पड़ा आ गया है, इसने ऐसा पिछले जन्म में क्या किया, क्या खाया, क्या दिया, क्या पिया जो मुझे प्रिय लग रहा है, ये पूछा। और परमात्मा ने फरमाया कि इसने पिछले जन्म में अहोभाव पूर्वक दिया और अहोभाव पूर्वक उसकी खुशी मनाता रहा। आज यदि हम किसी के नजर में चुभते हैं अच्छा कर करके, सब कुछ है और सब कुछ होने के बावजूद सब कुछ का आनंद नहीं है, अभाव रहे और आनंद नहीं हो समझ में आता है, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी समाधान नहीं है, है लेकिन है का सुख नहीं है, है लेकिन है से परेशान है। ये नौ तत्व की चर्चा तुम्हारे साथ इसलिए कर रहा हूं, मैंने कहा कि जिंदगी की हर समस्या का समाधान इन नौ तत्वों में है। ये प्रीवियस लाइफ के अपने बंध है, अच्छा करके पछताए, अच्छा किया उसके बदले मिला, सुचिन्ना कम्मा सुचिन्ना फलावंती, दुचिन्ना कम्मा दुचिन्ना फलावंती, मिला तो है लेकिन आनंद नहीं आ रहा है। मनुष्य जन्म मिला तो है लेकिन मनुष्य जीवन का आनंद नहीं आ पा रहा है। परिवार मिला है, फैमिली मिली है लेकिन फैमिली मेंबर का आनंद नहीं आ रहा है। धर्म मिला लेकिन धर्म का आनंद नहीं आ रहा है। स्वस्थ शरीर मिला लेकिन आनंद नहीं आ रहा है। क्या ये जिंदगी की टेजड़ी है? सब कुछ होकर के भी कुछ भी नहीं। और जब भी जिनके भी जीवन में ऐसा चल रहा होगा, सामने वाले व्यक्ति को ब्लेम मत करना बंधु, सामने वाले व्यक्ति को क्लेम मत करना, उसको ब्लेम करने से, उसको क्लेम करने से तुम्हारे अंदर करेक्शन होगा नहीं, केवल इन्फेक्शन बढ़ता जाएगा। करेक्शन स्वयं के अंदर करना होगा, और जिस दिन तुम स्वयं के अंदर करेक्शन करोगे, हैप्पीनेस का झरना बहने लगेगा, बहने लगेगा। तो नेकी कर करके पछताना नहीं, अच्छा करके पछताना नहीं। उसने रिस्पॉन्स क्या देना क्या नहीं देना, उसकी मति, उसकी गति, उसकी स्थिति, मैं मेरी मति क्यों बिगाड़ू? जो मैंने किया उसका आनंद मैं क्यों नहीं लूं? कई बार ऐसा हो जाता है कि कई लोग, रामेश्वर तुरा छोटा मासी में कैसा हिट होता, कई बार ऐसा हो जाता है, और बहुत सारे किस्से आपके पास हो गया, आपकी जिंदगी के होंगे, आसपास के जिंदगी के होंगे, और मैक्सिमम तो देखता ही यही हो कि अच्छा करके लोग दुखी होते हैं। और एक वाक्य सुनने को मिलता है, क्या अभी भला रो जमानो नहीं रियो, अभी भला रो जमानो नहीं रियो। अरे भला का जमाना था या नहीं था मुझे पता नहीं, लेकिन तुम्हारा जमाना तुम बना सकते हो। अच्छा करके पछताना नहीं, तपस्या करी तबियत बिगड़ी, नस्ती तपस्या करे तो ठीक रियास्तु, ए पागल, तपस्या करके कोई गुनाह थोड़ा किया है। क्यों पछताता है? अरे तबीयत बिगड़ी तो खाने वाले की भी बिगड़ती, नहीं खाने वाले की भी बिगड़ती। क्या संत बीमार नहीं पड़ते क्या? और क्या जो बिल्कुल जिम्स में जाते हैं, फिटनेस रखते हैं, उनका जिम में हार्ट फेल नहीं हुआ क्या? हाँ, बहुत सारे किस्से तुमको बता, वहीं पर फिटनेस सेंटर में ही कोलैप्स हो गए। इसलिए तपस्या करते समय कई बार बोलते रहता हूं, माथो दुखियो तपस्या में मत के जो, तपस्या के कारण से माथा दुख रहा है। तपस्या के कारण से माथा दुखता नहीं है, तपस्या के कारण से कर्म की निर्जरा होती है, असाता का उदय होता नहीं है। ना तप को बदनाम करो, ना धर्म को लेकर के, ना दान को लेकर के, ना संयम को लेकर के, ना उन्हें उस समय ठीक कर दिया आस्तो ना तो ठीक रिया आस्तो, उन्हें उस समय छोड़ दिया ना, गलती हो गई हमारी। क्या सोच रहे हो? कुछ कर सकते अभी आप, लेकिन उसका आनंद क्यों नहीं ले रहे हो? अच्छा करके पछताना नहीं, बोलो चेंज करो ना, अच्छा करके पछताऊंगा नहीं। और आज दिन तक मैंने जो अच्छा किया उस पर जो मैं पछताया हूं उसकी मैं आलोचना करूंगा। ये जिन शासन मिला है, ये जिन शासन में रहते हुए इस जन्म में मैं दुखी होता हूं, तो मेरा जितना नादान कोई नहीं है। अगले जन्म में तो दुखी होना ही नहीं। सभी को पता है शालीभद्र के पिछले जन्म की कहानी, जिक्र तक नहीं किया मुंह से मैंने क्या अच्छा किया, खीर बहरा दी, रो रो करके खीर बनाई थी, और संत आ गए और सोचा कि आधी बहराऊंगा। मम्मन सेठ ने पूरा बेरान, बाद में सोचता कि आधा बहराता था, इसने पहले प्लानिंग करी कि आधा बहराऊंगा ना आधा रखूंगा। लेकिन थाली में खींची हुई लकीर कहीं टिकती है? सारी खीर चले गई, लेकिन मन में पछताया नहीं। भूखा है, पेट दुख रहा है, भूख के मारे तिलमिला रहा है, लेकिन एक पल के लिए मन में नहीं आया कि आधे बहराता तो ठीक रहता। एक बार मुंह से नहीं बोला कि मां मैंने खीर खाई नहीं, मैं भूखा हूं, मुझे कुछ खिला दे। एक बार नहीं बोला, एक बार नहीं बोला। और मैं भी उस गुने का गुनेगार हूं कि एक बार किया बहुत बार बोला है, किया ही एक बार, बोला बार बार। उस बच्चे ने मुंह से जिक्र तक नहीं किया। वो कल्प वृक्ष का बीज बोया, उसको छेड़ा ही नहीं वापस, तो अगले जन्म में समृद्धि के उस शिखर पर पहुंचा। राजा श्रेणी दो लोगों के ऐश्वर्य के सामने स्वयं को गरीब समझ रहा है, एक मम्मन सेठ के सामने और दूसरा शालीभद्र के सामने। एक करके पछताया, एक करके जिक्र भी नहीं किया, पछताने की बात तो दूर। एक कल्प लीजिए, एक प्रतिज्ञा करिए, एक संकल्प करिए, मैंने जो कुछ किया है उसका जिक्र जुबान से नहीं करूंगा। जो मैंने बुरा किया उसको छिपाऊंगा नहीं, जो अच्छा किया उसको बोलूंगा नहीं। बोया हुआ बीज तभी पनपता है, बोया हुआ बीज तभी पनपता है जब वो छिपा हुआ रहता है। बोया हुआ बीज खुले में आ जाए तो पनपता नहीं। क्यों हमारा अच्छा पनपता नहीं है और क्यों हमारा बुरा समाप्त नहीं होता है। बुरे को हम छिपा के रखते हैं, अच्छे को हम ओपन में रखते हैं। डायमंड क्या है? आपका पाप डायमंड है कि आपका पुण्य डायमंड है? हेलो, पुण्य डायमंड है ना। डायमंड को ओपन में रखते हो कि लॉकर में रखते हो? इसको लॉकर में रखो। कचरा कभी लॉकर में मत रखो, कचरा कभी लॉकर में मत रखो, कचरे को कभी मत छिपाओ। जो कचरा छिपेगा वो मल्टीपल हो जाएगा, जो पुण्य छिपेगा वो मल्टीपल हो जाएगा। तो बोलेंगे मेरे पीछे, मैं अच्छा करके पछताऊंगा नहीं, जो अच्छा किया उसका जिक्र करूंगा नहीं। इसके पहले जो मैं पछताया हूं उसकी आलोचना कर करके अपने आप को उससे फ्री करूंगा। चदारी मंगलम मरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतोदम मंगलम चतारी लघुतमारी हंता लघुतमा सिद्धा लघुतमा साहु लघुतमा केवली पन्नतो धम्मो लघुतमा चतारी सनम बवज्जामि अरिहंते सनम बवज्जामि सिद्धे सनम बवज्जामि साहु सनम बवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम सनम बवज्जामि चार मंगल चारुतम चार शरणा दुख हरणा सुख करना और न शरणा कोई जो भव्य प्राणी करे आराधन अक्षय अमर पदम। चलते चलते सूचनाएं सुनते जाना। जैसे यहां पुरुषाकार का 72 आवर्स का शिविर शुरुआत में हुआ, वैसे ही अष्टमंगल का स्वस्तिक श्रीवत्स को अपने अंतर मन में कैसे पहुंचाना, उसका 3 दिन का शिविर 4, 5, 6 सितंबर को 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए हो रहा है। जिन्होंने पुरुषाकार नहीं किया उन्हीं के लिए पेरेंटिंग का शिविर 2, 3, 4, 5, 6 सितंबर रात को 8:30 से 10। माँ बाप दोनों ही इस शिविर में अनिवार्य है, सिंगल को एंट्री नहीं है। राइजिंग सन 30 अगस्त को एक दिन का पुराने और नए राइजिंग सन का एक छोटा सा गेट टुगेदर होने जा रहा है। सीक्रेट ऑफ कर्मा का 4, 5, 6 को सास और बहू के लिए दोपहर में 2:30 से 3:30 का एक क्लास 3 दिन का है। आज के 24 के पचकान ललित जी घुगड़े ने 25 पहले ही बड़े महाराज साहब से पचके हुए हैं। खुशी चोड़िया राहुरी, आरती सुराना राहुरी, शिल्पा नहार नगर उगे सूर्य पंचाशत भक्त मचकामी तिव्यम प्याहरम स्वासनम खायम सायम सहसा गारेण महत्ता गारेण सव समया वत्या गारेण ओसरे ओसरे ओसरे। 24 उपास के पचकान लेने वाले को
1: धन्यवाद।
0: उगे सूर्य एक समय के उपरांत नहान के पचकान स्वासनम खायम सायम सहसा गारेण महत्ता गारेण सव समया वत्या गारेण ओसरे ओसरे ओसरे। आज का आयम बिल उगे सूर्य अम्बिलम बचकामी लेवा लेवेनम सहसा गरेनम महत्ता गरेनम सो समय वत्या गरेन ओसरे ओसरे ओसरे। पर्युषण पर्व 8 तारीख से शुरू हो रहा है। पर्युषण पर्व में सबको ब्यासना तो कंपलसरी करना ही करना है और उसकी प्रैक्टिस अभी से शुरू करोगे तो अच्छा लगेगा। तो कल से ब्यासने का ध्यान रखना। आज का उपवास उगे सूर्य अमदनम बचकामी तिविहम प्यारम स्वासनम खयम सयम सहसा गरेनम महत्ता गरेनम सुबह समैया वत्या गरण ओसरे ओसरे ओसरे। बाबू सेठ रामेश्वर ने उपवास किया आज, किसके उपलक्ष्य में क्या बताया आपको? मैंने सबको कहा था कि आज श्री तीर्थेश श्री महाराज साहब की तपस का शिखर दिवस है। 18, 19 और 20 की अहमिल की होली, 18 एमबिल कर करके उपास, 19 एमबिल करके उपास और 20 एमबिल कल उसके पूरे हुए हैं तीसरे होली के और आज उसका उपास है। मैंने कहा था कि एक आसन आई मिल उपास का ध्यान रखना, लेकिन वो राखी रा त्योहार दिन में वो सूचना कटे बह गई, मालूम ही नहीं पड़ी मैंने। ओके, उपास के पचकान लेने वाले को आज का भी आसन उगे सूर्य दो समय के उपरांत तीन हार के पचकान स्वासनम खैमम सैमम सहसा गरे नम महत्ता गरे नम सव समया वत्या गरे नम ओसरे ओसरे ओसरे। एक आसन आय मिल उपास करने वाले को धन्यवाद। और कोई पंचकान सूचना?
1: राष्ट्र संत आचार्य सम्राट पूज्य आनंद श्री अमर साहब के चरणों में कोटिशा वंदन। मंच पर विराजित उपाध्याय प्रवर पूज्य प्रवीण सिंह जी महाराज साहब, मधुर कंठी पूज्य तीर्थेश्वर जी महाराज साहब, साध्वी वृंद के चरणों में कोटिशा वंदन। आप सबको विदिती है कि कल का जो रक्षाबंधन का कार्यक्रम यहाँ पर हुआ और जो उपस्थिति देखकर समर्पण चातुर्मास समिति तो हर्ष से उल्लासित हुई है, लेकिन उपाध्याय जी भी कल बहुत ही उल्लासित हुए। और आप सबको पता है कि 8 तारीख से पर्युषण पर्व शुरू हो रहे हैं। अपने यहाँ पर्युषण पर्व में लगातार 8 दिन प्रतिगमन के लिए छोटे बच्चों का भी प्रतिगमन का आयोजन होता है। वो इस बार भी पर्युषण पर्व में छोटे बच्चों का प्रतिगमन का आयोजन होगा ही, और उसमें हम बच्चों को कुछ न कुछ गिफ्ट देते हैं। मेरी भावना है जिसको भी पर्युषण पर्व में बच्चों को गिफ्ट देना हो तो हमारे ट्रस्टी के पास अपने नाम लिखवाए। इसके पहले भी बता चुका हूँ, अपनी उपस्थिति भारी संख्या में रहती है और दान पेटी भी यहाँ पे लगाई हुई है। वो दान पेटी समर्पण चातुर्मास समिति के लिए नहीं है, बल्कि वो जैन धार्मिक परीक्षा बोर्ड और आनंद तीर्थ चिचोड़ने के लिए लगाई गई है। जो भी उसमें दान राशि आएगी वो वहाँ पे ही दी जाएगी। साथ में ही आज हर्ष का विषय है कि 25 उपवास की पचकाउनी आज यहाँ पर हुई है और मास कमन के आगे तपस्वी बढ़ रहे हैं। सभी तपस्वियों को समर्पण चातुर्मास समिति की ओर से साधुवाद धन्यवाद। विशेष तौर पर हमारे राधेश्याम ने, रामेश्वर ने आज उपवास के पचकान किए, तो हम ट्रस्ट मंडल की ओर से उनका स्वागत करना चाहता हूँ। तो सभी ट्रस्टियों ने रामेश्वर आगे आ जाए, आपका उपवास हमारे लिए गौरव रखता है और तीर्थेश्वर जी महाराज साहब की प्रेरणा से आपने उपवास किया है, तो बहुत बहुत आप गौरव के पात्र हो। और सबसे तो अनुमोदना हम सब तपस्वी की करते हैं, विशेष तौर पर तीर्थेश्वर जी महाराज साहब की जो तपस्या चलती है वो किसी को नजरअंदाज भी नहीं आएगी। जब वो मंच पे आते हैं तो वे सच्ची तपस्वी के रूप में आते हैं कि नॉर्मल रूप में आते हैं। उनके एम्बिल की उनके गत 4-5 सालों से आड़ा आसन नहीं करना, ये सारी बातें उनके तप को और आचार्य भगवान और उपाध्याय प्रवीण सिंह महाराज साहब की प्रेरणा से उनको जो एक तप

सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खरे को भी खोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।

0: ज्यादा वफादार है। खाता है कूड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।
1: कहिए श्रीमान, आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।